0: साला ले बट्ठ थी ना बट्ठ
1: बट्ठ थी ना बट्ठ
0: ले चौक अरे रंग में तुरंग खू मंडे ले coba coba le sekali lagi le
1: bedetina beda
0: rati.